रिश्ते प्यारां दे रिश्ते दिलां दे रिश्ते दिलदारां दे रिश्ते।

बिल्कुल दोस्तों, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड। लॉग ऑन www.parvazradio.com। दोस्तों आज जी शायरों शायरी का प्रोग्राम, कल से असा ईरान ते यूएसए ते गलबात कीती सी, ते सरदार सूबा सिंह जी खैरा होना शहीद भगत सिंह दी सोच ते गलबात कीती सी, ते आज जी शायरो शायरी दा प्रोग्राम। दोस्तो तुसी मैनू सिर्फ एक मिस कॉल मारनी है ते मैं टर्न बाय टर्न पेश होवांगा जी तुहाडे कोल, ते जेड़े सज्जन शायर शायर नहीं नो प्रॉब्लम, वो आण के कोई इधर उधर दी अपने इलाके दी कोई कोई जमीन तो लैके तारियां तक किसी किस्म की भी गलबात कर सकते हैं, साढ़े नाल सांझ पाओ, अपने आले दुआले की भी सांझ पाओ, नाले कित्थे तुसी सुन रहे हो सानू। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड। लॉग ऑन www.parvazradio.com। ये सारे लफ्ज छोटे ने जी, parvazradio.com, parvaz radio is a one word, ते साड़ी लोगो जड़ा दो स्पीकर होन गए येलो कलर दे, ते तुसी वो अपने प्ले स्टोर ते जाके डाउनलोड कर लो, आप ते तुसी सुन दे हो, ते दूसरे दोस्तों अपने सज्जना मित्रां नूं भी डाउनलोड करवाओ, आप सब दी मेहरबानी होगी। ते मैं हां जी आपका होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा, स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। नेता चंद्रे रुजगारी मारे जंद्रे अकलां झूर दिया, नेता चंद्रे रुजगारी मारे जंदरे अकलां झूर दिया, व्याह के छड गए विदेशी भज गए यादां दूर दिया, चारों तरफ सजावां बाजार विच जावां नजरां घूर दिया, अखां बिलियां सदा ही रहण गिलियां तेरी हूर दिया, अखां बिलियां सदा ही रहण गिलियां तेरी हूर दिया। देश च रोजगार नहीं तो फिर सज्जना लोगों ने भजना ही है। वेरी गुड आफ्टरनून, तुसी सुन रहे हो जी प्रवास रेडियो।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक जिहड़ा ए मैं आप जी दी नजर कर रही हूं विशेष करके,
0: थैंक यू जी,
1: जिहड़ा हुण मैं सुनाउण लगी
0: हां जी

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी मैया तो पे वार दूं, इसलिए तू इतना उदास सुखे सुखे हूं।

0: और मदन मोहन जी का म्यूजिक है जिन्होंने मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजर में।
1: वंडरफुल जी, मतलब की फिल्म इंडस्ट्री क्या बात ने, पर जेड़िया मेनू खास करके जेड़े 90 दे 70 दे जे इथे जे दे गाने ना 30 साल दे विच विच जेड़े हन कमाल दे गाने। ए नहीं भी आज भी चलो कोई कोई गाना वधिया मेनू लगदा, लेकिन पिछले सारे ही सोहने लगदे ने गाने।
0: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना पुराने गीत तुसी लगा के सो जाओ तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओह तुहाडे लई लिखे गए ने।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: जज्बात ने।
1: हाँ जी हाँ जी, नो डाउट।
0: कोई भी गीत तुम सुनोगे हर व्यक्ति नु लगता ये मेरे लिए लिखा गया, ये मेरे जज्बात ने।
1: जी जी आराधना जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्निया सोहनिया रौनक लाईया गाने सुनाए।
0: थैंक यू।
1: मैं तुहाडे नाम एक शेयर करांगा
0: जी अर्ज, सॉरी
1: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
0: क्या बात है
1: सर, कह ना कि जेड़े तुसी सुनोगे तो एवं लगेगा कि तरह मेरे वास्ते गीत लिखा गया है।
0: जी हाँ जी,
1: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने, दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है, जिंदे रहो।
1: दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने, ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है सर,
1: ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने, बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे, इस जग विच दुख बथेरे ने, बेरुखी दी बारिश बंद कर दे, ऑलरेडी दुख बड़े ने, उतो तुही भी दुख देन दे हो।
0: आहो नहीं, मैं तो आप जी ये कहांगी कि हुण आप जी रेडियो तो खाली जो हुण ते एक सोहना जिहा पैग बना लियो।
1: नहीं ये तू अर्ली है जी, अर्ली है, सौन लगा।
0: अच्छा
1: इस वे मैडम जी 5 बजे ने साडे जर्मन दे विच।
0: अच्छा जी,
1: धुप लगी है, धुप लगी है।
0: ओके ओके, अच्छा जी,
1: अज मैं अपने गार्डन च काम करना, बूटे लाने ने बहुत सोहने फुला।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: गुड गुड, वेरी गुड।
1: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल, तंदुरुस्त रहो, जीवदे वसदे रहो।
0: थैंक यू सो मच सर, और सारे प्रभात रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: और बस आपा प्रभात रेडियो नाल इसे तरह प्यार सादी मोहब्बत
1: बनी रहे। बहुत बहुत मेहरबानी,
0: बाजवा साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी, साडे वल्लों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल, साडा भी प्यार उन्ना ही बरकरार, बल्कि दहां नाल जर्ब दे के। ठीक है
0: जी जी, ओके, थैंक यू,
1: हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुणी जिहड़े खूबसूरत गाने सुना के गए ने। ते दोस्तो इत्थे ही साडा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा ओ खत्म हुंदा, ते अगले हफ्ते सैटरडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवास रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लेनेट।

मिठे बोला न आप दे दिला ते राज करन वाला ए है जी प्रवास रेडियो ब्रेकफास्ट जी हाँ प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योरसेल्फ गॉड यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड लवली स्वीट और फनी वर्ल्ड with your own watching eyes and experience.

0: चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े
1: घोड़ा बोला

0: ঘোড়া চতুরা এক পেরায় না, ইয়া ঘোড়া বললাম ইয়া চতুর বললাম।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत

0: फेंकने लगा था। मोनिका ओ माय डार्लिंग,
1: बहुत सोने
0: और उन्होंने गीत बड़े हिट गीत ने उन्होंने।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

हां जी दोस्तो, गुरु रविदास जी की बाणी वक-वक रागां विच दर्ज है। जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेड़े है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है। संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां जी। दोस्तों साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि 41 दे 41 शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किए हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: हां जी, सतगुरु रविदास जी दे पिता श्रीमती श्री मान संतोख दास जी ते माता श्रीमती कलसा देवी जी सन। उन्हां दा ब्याह 12 साल दी उम्र विच पिंड मिर्जापुर दी माता लोना देवी नाल होया। उन आप जी दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिस दा नाम विजय दास रख्या गया। सतगुरु रविदास जी चमार वजो शनाखत करदे सन अते पेशावर जानवरां दे चम दा काम करदे सन। हिंदू वर्ण मुताबक चमार कमजात बरादरी है। इस सिस्टम दे असर कारण गुरु रविदास जी महाराज नू विद्यालय जाके इलम हासिल करन दा हक नहीं सी। चमार बरादरी नाल तालुक होण दे कारण बनारस विच मजलूमां लई आवाज बुलंद करन करके सतगुरु रविदास जी नाल बद सलूकी कीती गई। सांझी वालता दा सुनेहा दिंदिया ए उस समय दी लुकाई विच मौजूद ऊच नीच छुआछात ते पखंड दे सख्त खिलाफ बोले। दक्षिणी एशिया दुआले दूर दराडे सफर कर गुरु रविदास जी ने रबी शख्सियत नाल मुलाकातां दे नाल रब दी सिफत बंदगी दे वाक सच इलाही सुनेहा दिता। राजा पीपा, राणी मीराबाई, राणी चालाबाई ते होर भी इना दे कई मुरीद सन। जी आराधना जी, अगला शब्द तुसी केड़ा सुनाओगे जी?
1: जी ए, वैसे ते मैं सारे शब्द सारे दो दो बजंदे सी सानू, सवेर दे चार भी बजंदे सी सर। एक शब्द नू गांदिया गांदिया उदे मायनिया नू समझना, फिर उदे उच्चारण नू, खास करके उच्चारण अगर थोड़ा कम्पलीट है तो फिर तुसी शब्द गा सकदे हो। फिर मैं सारा कुछ मैनू राकेश जी ने दस्या क्योंकि मेरे शब्दां दे सीनियर ओ सीगे और गजलां दी और फिल्मी गाणियां दी मैं उन्हां दी सीनियर सीगी, इस करके साडी म्यूचुअल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सीगी। ते सारे शब्द एक एक लाइन ओ मैनू समझांदे सी, इनू इदां कहना, इनू इदां कहना। ते ए जिहड़ा शब्द हुण मैं सुनाण लगी आ ए गुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे ने, कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना बोझ, ऐसे मेरा मन दिखिया बिमोया कुछ आरा पार ना सूझ। और बहुत सोना शब्द है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये भी अपना रिकॉर्ड करना है, आप सब का सहयोग लिया, आप सबका आशीर्वाद देना तो जरूर वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। सो मैं ये आप सब सबन करा दूंगी और आप सबन कर दूंगा।

माटी को पुत्रा कैसे नचतू है, माटी को पुत्रा कैसे नचतू है। माटी को पुत्रा कैसे नचतू है, माटी को पुत्रा कैसे नचतू है।

0: कैसी नचत है मिट्टी को उतरा कैसी नचत है मिट्टी को उतरा कैसी नचत है। जय गुरु जी।
1: हां जी, गुरु रविदास जी दा समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्हां ने जात पात दे भेदभाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता दा संदेश दित्ता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशा ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
0: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणा च सारे जिनी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रवे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बद के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना, पर इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनू दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रवास रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जेड़े श्रोता सुन रहे ने, आप सब नूं बड़े अदब बड़ी आदती नाल सत श्री अकाल, और इसे तरह तुसी प्रवास रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।